नमस्कार श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दीवान केंद्र है और आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज सन 2026 अक्टूबर महीने की 4 तारीख व दिन है रविवार। श्रोताओं, अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थुतन ताशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियंत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियंत्रिकी सहायक श्री हेमंता सुर्यारी, श्री अशुद्ध बर्मन और श्री तानिंग ताकू, मनपा में उद्घोषक श्री कुंचो सांगी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका किजांग लामू और आप सभी का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत करती हूं।

श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तमाम केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: Mirabai Chanu's silver gave India its first medal in the sport since 1998. India proudly signs off from Aichi Nagoya 2026, etching another glorious chapter into its sporting history. Komati Parikh, Akashwani News, Delhi.
1: Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today released two male great Indian bustards into the wild at Sum in the Desert National Park at Jaisalmer in Rajasthan. In a social media post, the Union Minister said that this landmark success has been made possible by the nearly decade-long unwavering dedication of India's scientists, researchers and ground staff. He added the release marks an important transition in India's Great Indian Bustards Conservation Program. Mr. Yadav also thanked Prime Minister Narendra Modi for his support in enabling the scientific community to work towards the conservation. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Journey of Viksit Bharat will be built on strength of India's institutes, MSMEs and startups, says Vice President C.P. Radhakrishnan. In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram Rajinagar Assembly by-elections. PM Setu scheme aiming to transform industrial training institutes completes 1 year. IMD forecasts heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Yemen confirms strikes against Houthi-controlled areas in Sana'a and Sada. Houthi claims missile and drone attack targeting Aramco facilities in Riyadh. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. India secures fourth place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Mukesh Kumar. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सदा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
3: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
2: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटी

0: मुंबई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
2: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
3: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
2: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल

0: शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉ त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के रियाद पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैस और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
3: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी

0: और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले दो दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मेरे वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे लामा करसंग और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

Jesus.

श्रोताओं कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे लामा कर संघ और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत। श्रोताओं तो इसके साथ ही भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र रहा। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे संज्ञा मर्फियो और साथियों की आवाजों में चंद बुगुन गीत। श्रोताओं तो लीजिए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत अभी आप आनंद ले रहे थे चंद बुगुन गीतों का संज्ञा मर्फ्यू और साथियों के आवाजों में। श्रोताओं तो इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है और आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3:30 हुए हैं और प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पीएम श्री जैन विदवान की 11वीं कक्षा के छात्र कुमारी डिकिल हांगो से जलवायु परिवर्तन का प्रकृति समुदाय पर प्रभाव विषय पर उनका विचार। श्रोताओं तो दीजिए पेश है कार्यक्रम मेरी बात।
1: ताशिदिले आप सभी को मैं डिकिल हांगो पीएम श्री कक्षा 11वीं विज्ञान की आकाशवाणी तवांग से प्रसारित मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय समुदायों पर प्रभाव। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ वह केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व संस्कृति और भविष्य से जुड़ा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय समुदायों पर प्रभाव। साथियों, जलवायु परिवर्तन आज किसी रिपोर्ट या सम्मेलन की बात नहीं रह गई है। यह परिवर्तन हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि गर्मियां पहले से अधिक बढ़ने लगी है, सर्दियों में बर्फबारी अनियमित हो गई है, बारिश कभी बहुत अधिक हो तो कभी बिल्कुल नहीं होती है। यह सभी परिवर्तन मानव गतिविधियों का परिणाम है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर जीवन रेखा होती है लेकिन बढ़ते तापमान के कारण ये तेजी से पिघल रहे हैं, इससे स्रोत सूख रहे हैं, भविष्य में जल संकट बढ़ रहा है। पहाड़ों में अब ना तो बारिश समय पर होती है और न ही बर्फबारी पेरी जैसी रही है। साथियों, अब मैं जलवायु परिवर्तन हमारे मोनपा जनजाति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं के विषय पर बोलना चाहूंगी। मोनपा समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीते आए हैं। हमारी संस्कृति, कृषि, पशुपालन और जीवन शैली पूरी तरह से पहाड़, मौसम और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है लेकिन आज बर्फबारी का समय बदल रहा है, जल स्रोत धीरे धीरे सूख रहे हैं, पशुपालन की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। इसके बावजूद मोनपा जनजाति की पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति संसाधनों की रक्षा, सामुदायिक जीवन और सदा जीवन आज पूरी दुनिया के लिए एक सीख है। यदि हम उनके अनुभव और प्रकृति सम्मत जीवन शैली से सीख लें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ के मौसम पर निर्भर रहती है मोनपा समुदायों की पारंपरिक खेती लेकिन अब फसल बोने का समय बदल गया है। पाला और असमय बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। चारागाह क्षेत्रों में कमी आ रही है। जब जीवन कठिन हो जाता है तो युवा रोजगार की सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। इससे गांवों की जनसंख्या घटती है, पारंपरिक ज्ञान संस्कृति कमजोर होती है, समाधान सरकार या संस्थाओं तक

0: सीमित नहीं है। हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। पेड़ लगाना और बचाना, जल स्रोतों की रक्षा करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना आदि। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, यदि तवंग के पहाड़ सुरक्षित है तो नीचे बहने वाली नदियां सुरक्षित है। यदि मनपा संस्कृति सुरक्षित है तो प्रकृति का संतुलन सुरक्षित है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सिर्फ बातें नहीं जिम्मेदारियां निभाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद
1: श्रोताओं। कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पीएम श्री जैन वितवांग के 11वीं कक्षा के छात्र कुमारी दिकिलहामो से जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक समुदाय पर प्रभाव विषय पर उनका विचार। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबाव केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए आनंद लेते हैं। जगदी इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई की आवाज में यह गीत। श्रोताओं, इस गीत को लिखा है जयदेव सहानी ने तथा संगीत से संवारा है सलीम सुलेमान ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए आनंद लेते हैं। हिचकी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में राजशेखर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जसलीन रॉयल ने।

श्रोताओं, इस वक्त बाना ले रहे हैं कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत चंद हिंदी फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए बाना लेते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल और उदित नारायण के युगल आवाजों में यह गीत। इस गीत के गीतकार हैं अनविता दत्त तथा संगीतकार हैं विशाल शेखर।

लेडीज वर्सेस रिकी बाल फिल्म से आइए गाना लेते हैं शिल्पा राव की आवाज में यह गीत। अमिताभ बच्चाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है सलीम सुलेमान ने।

श्रोताओं, आइए अब आना लेते हैं वेड़ ज़ारा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत। जावेद अख्तर साहब के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: श्रोता वीएल जारा फिल्म के इस गीत के साथ ही नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तमाम केंद्र है। समय संध्या के 4:02 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम महिला जगत। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे खंडू रोजांगो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तवांग के एचआईवी एड्स काउंसिलर टुंडुक डोलमा से एचआईवी एड्स के संक्रमण के फैलने के कारण, इसके प्रमुख लक्षण एवं संकेत, बचाव के उपाय तथा उपचार विषय पर एक बातचीत। इनके साथ बातचीत कर रहे हैं श्रीमती सेपा वांगमू। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम महिला जगत।
1: आकाशवाणी तवांग से कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जिला अस्पताल तवांग के आईसीटीसी यानी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के काउंसलर मिस डुंडुप डोलमा को। डोलमा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से टशी दिलेक।
1: तो सबसे पहले डोलमा जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि एचआईवी एड्स आखिरकार है क्या?
2: एचआईवी एड्स जो ऐसा है, मीन्स हम लोग हर वक्त एचआईवी ऑब्लिक एड्स बोलता है। एचआईवी इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। एड्स जो है एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी

0: सिंड्रोम है। तो एचआईवी जो हम लोग का इनिशियल स्टेज रहता है और एड्स जो हम लोग का एडवांस स्टेज रहता है।
1: ये एचआईवी और एड्स जो है अलग अलग है
0: जी।
1: अच्छा, तो एचआईवी एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरह से फैलते हैं?
0: एचआईवी एड्स फैलने का चार कारण है। एक है अगर कोई भी पार्टनर एचआईवी पॉजिटिव है और वो सेक्सुअली एक्टिव है तो सेक्सुअली फैलेगा। और दूसरा कारण है एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब खून या खून का सामान से हम लोग कोई एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट बोलते हैं। और तीसरा होता है पहले यूज किया हुआ सिरिंज या नीडल्स इंजेक्शन। तो इसलिए हर वक्त आप जब भी चेक कर लीजिए हॉस्पिटल जाते वक्त, आप ये श्योर कीजिए कि नया सिरिंज यूज हो। तो आपको मालूम ही है जब भी आप लोग हॉस्पिटल में आते हैं इंजेक्शन के लिए तो नया सिरिंज ही यूज होता है। और चौथा, अगर मार्क पॉजिटिव रहता है तो बेबी को फैलने का चांसेस रहता है। और ये एचआईवी एड्स कैसा नहीं फैलता है
1: जी?
0: अगर कोई पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है तो साथ में काम करने से नहीं फैलेगा, खाने पीने से भी नहीं फैलेगा। आप कपड़ा टॉयलेट ये सब शेयरिंग कर सकते हैं। और तीसरा, आप छूने से भी नहीं फैलेगा। और बाई चांस कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को कोई मच्छर जाके काट के फिर वही मच्छर आके नॉन पॉजिटिव पेशेंट को काटने से भी नहीं फैलेगा, क्योंकि मच्छर में एचआईवी का वायरस सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि ह्यूमन का ही ब्लड चाहिए इसलिए।
1: अच्छा, तो इसकी शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं?
0: एचआईवी एड्स में हम लोग चार स्टेज कवर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं देगा मोस्ट प्रोबेबली। आपको फर्स्ट स्टेज में आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए एक साइलेंट किलर जैसा भी है ये।
1: अच्छा,
0: तो सेकेंड स्टेज में आप बॉडी वेट लॉस होगा लेस देन टेन परसेंट, मतलब अगर आप 60 kg है तो आपका अराउंड 5 kg जैसा कम होगा। उसके बाद थकावट आएगा, सुबह शाम बुखार आएगा जब आप आराम से बैठा होगा। उसके बाद रात को सोते वक्त पसीना आएगा। उसके बाद कफ मोर देन 2 weeks होगा। लेकिन ये साइन एंड सिम्टम्स आप फिर कभी कभी गलत भी हो सकता है, सेम साइन एंड सिम्टम्स आपको ट्यूबरक्लोसिस में भी रहता है।
1: अच्छा,
0: उसके बाद थर्ड स्टेज से आपका डिफरेंट, जैसे आदमी का अपना खुद का इम्यून सिस्टम है उसका मुताबिक से साइन एंड सिम्टम्स आएगा। तो जैसे थर्ड स्टेज में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। और उसके बाद फोर्थ स्टेज में कपोजी सार्कोजमा जैसे स्किन कैंसर ये सब बहुत कॉमन रहता है। लेकिन जो भी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है उसको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज ट्यूबरक्लोसिस लगता है। इसलिए हम लोग जितना भी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट आता है उसका ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करता ही है टीबी, और जितना भी टीबी पेशेंट आता है उनका एचआईवी टेस्ट कराता ही है। टेस्ट कराने का कारण, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट अगर खुद केयर नहीं करेगा तो, क्योंकि उसका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम डाउन रहता है तो उनको ट्यूबरक्लोसिस लग सकता है। अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है, अगर वो हाई रिस्क बिहेवियर में जाता है, मल्टीपल पार्टनर शेयर करता है या यूज करता है, तो आईडी यूज है जैसे इंजेक्टेड ड्रग यूजर ये सब यूज करता है, तो फिर उनको एचआईवी लगने का चांसेस रहता है। तो इसलिए ये मोस्ट इंटर रिलेटेड।
1: अच्छा, तो ये एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है?
0: एचआईवी जो इनिशियल स्टेज है, जो हम लोग एचआईवी को सिर्फ हम इनिशियल स्टेज बोलेगा, लेकिन एड्स जो ये एडवांस स्टेज है, तो एड्स इज अ फुल फ्लोन डिजीज।
1: अच्छा,
0: और एचआईवी का जो फर्स्ट दो स्टेज है उस वक्त हम लोग सिर्फ एचआईवी इन्फेक्टेड एचआईवी पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन जब एड्स में स्टेज में आ जाता है थर्ड या फोर्थ स्टेज में, उस वक्त हम लोग का फुल फ्लोन डिजीज ही हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो उस वक्त साइन एंड सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है तो उनको आप साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं देगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन पॉजिटिव है एचआईवी। लेकिन एड्स स्टेज में जो आपको पता चल जाता है, क्योंकि उनका काफी ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं
1: जी। तो ये एचआईवी पॉजिटिव होने से लेकर एड्स के लक्षण आने तक कितना समय लगता है?
0: एग्जैक्टली ये इतना समय लगता नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जिसका अपना खुद का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसको आस्ते से एड्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम डाउन है उसका जल्दी होगा। और प्लस अगर वो पेशेंट का CD4 काउंट, जो हम लोग का मेडिकल टर्म में CD4 काउंट बोलता है, जो इम्यून जैसे व्हाइट ब्लड सेल
1: जी,
0: व्हाइट ब्लड सेल अगर उसका हाई है, अच्छा है, तो उसको एड्स में जाने के लिए कम रहेगा।
1: अच्छा।
0: और प्लस उसका वायरल लोड, जैसे जो एचआईवी इन्फेक्टेड का जो वायरस का वायरल लोड है, अगर वो ज्यादा हाई रहेगा तो वो जल्दी एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
1: अच्छा, तो इसका मतलब है कि जिसका इम्यून सिस्टम जो है कमजोर है उसे इस बीमारी से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है
0: जी।
1: तो डोना जी, खासकर मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि इसकी रोकथाम जो है किस तरह किया जा सकती है?
0: फर्स्टली हम लोग पेशेंट को, जब भी हम लोग कोई पेशेंट आता है जैसे एंटीनेटल चेकअप के लिए आता है, ANC पेशेंट जो हम प्रेग्नेंट लेडी आता है, या कोई वॉलेंटियर पेशेंट आता है या ब्लड बैंक में आता है, तो उनको हम लोग पहले प्री टेस्ट काउंसलिंग करता है। प्री टेस्ट काउंसलिंग मतलब उसको हम लोग बता देते हैं कि आपको किसके लिए टेस्टिंग हो रहा है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद उनका कंसर्न फॉर्म साइन होता है। कंसर्न फॉर्म में उनको लिखा होता है कि किसके लिए आपको टेस्ट कर रहा है, आपका रिपोर्ट क्या आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, पॉजिटिव, ये आ सकता है। अगर आ गया तो फिर आपका फादर क्या होगा, ये सब पूरा हम लोग डिटेल में बताता है। तो उसके बाद ही हम लोग टेस्टिंग कराता है
1: जी। तो एक और अहम सवाल जो है मैं आपसे करना चाहूंगी कि HIV में विंडो

0: पीरियड क्या है?
1: एचआईवी में विंडो पीरियड से पहले मैं आपको टेस्टिंग प्रोसीजर थोड़ा समझा दूंगी। अच्छा। जब भी हम लोग पेशेंट को एचआईवी टेस्टिंग कराता है तो उस वक्त पेशेंट को पहले हम लोग टेस्ट कराते हैं, अगर उसमें पॉजिटिव निकला है तो फिर हम लोग दोबारा रिपीट बुलाते हैं। रिपीट बुला के हम लोग अगेन तीन टेस्ट करते हैं। जब तक उनका तीन का तीनों टेस्ट कंफर्म नहीं होता है तब तक हम लोग एचआईवी पॉजिटिव है बोलकर उनको डिक्लेयर नहीं कराते। ये करने का कारण ही क्या है बोलने से, कभी भी कोई पेशेंट को फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट ना मिले, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट मिल गया पेशेंट पैनिक हो गया तो कभी कभी पेशेंट सुसाइड करने का चांसेस भी रहता है। इसलिए हम लोग पूरा कंफर्म ही करता है जैसे टेस्टिंग।

0: जैसे कोई फीमेल सेक्स वर्कर के पास विजिट किया है विद इन वन मंथ और विद इन वन वीक लाइक दैट, तो उस वक्त अगर वो पेशेंट वॉलेंटियरली आया है या कोई आईडीयूस है जैसे इंजेक्टेड ड्रग यूजर है, उसने सिरिंज शेयर किया है तो वो टेस्टिंग के लिए आया तो मोस्ट प्रोबेबली उनको नेगेटिव निकलता है
1: जी।
0: वो नेगेटिव निकलता है तो भले वो एचआईवी से इन्फेक्टेड हो गया हो तभी भी उनको नेगेटिव निकलेगा, तो इसको हम लोग विंडो पीरियड कहते हैं। तो ये विंडो पीरियड जो कितना लंबा रहता है बोलने से, पेशेंट को फर्स्ट हम लोग जब टेस्ट करते हैं उस वक्त बुलाते हैं, फिर सेकेंड हम लोग उनको वन मंथ के बाद बुलाते हैं, एक महीने के बाद, फिर उसके बाद हम लोग तीन महीने के बाद बुलाते हैं, फिर छह महीने के। लेकिन तीन महीना में मोस्ट ऑफ द पेशेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है
1: तीन महीने में
0: जी। तो ड्यूरिंग ये विंडो पीरियड में अगर आप ब्लड डोनेशन करता है तो ब्लड से फैलने का चांसेस रहता है।
1: इसका मतलब है कि कमर्शियल ब्लड बैंक से जब हम खून लेते हैं तो रिस्क ज्यादा रहता है
0: जी। हम लोग जब भी किसी पेशेंट को ब्लड लेने के लिए जब हम लोग एडवाइस करते हैं तो हम लोग वही बोलता है कि कमर्शियल ब्लड डोनर से मत लीजिए। ब्लड बैंक में तो कमर्शियल ब्लड डोनर नहीं आता, ब्लड बैंक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी आप आसाम में देखिए, आपको इमरजेंसी ऑपरेशन करना है तो आप जहां से भी ब्लड ले लेगा, तो उस वक्त कोई ऐसा ग्रुप भी रहता है जो ब्लड बिक्री करता है अपना खुद रोजगार के लिए, अपना खुद का लाइफ जीने के लिए, तो वो पेशेंट कभी भी आपको हिस्ट्री नहीं बताएगा। तो हिस्ट्री नहीं बताएगा तो वो मे भी मल्टीपल पार्टनर के साथ हो सकता है, तो इसलिए उस वक्त अगर वो पेशेंट विंडो पीरियड में है तो एचआईवी लगने का चांसेस रहता है,
1: चांसेस ज्यादा है
0: जी।
1: तो जब कोई एक गर्भवती महिला जो है आपके पास चेकअप के लिए आती है तो क्या अगर वो उसे पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या उसके परिवार के सदस्यों को भी इसका टेस्ट कराना जरूरी होता है?
0: परिवार बोलने से भी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करते हैं उनका हिस्ट्री लेते हैं
1: जी।
0: तो अगर उनका हस्बैंड है तो हस्बैंड को तो हम लोग कंपलसरी टेस्ट कराते ही है, लेकिन हम लोग पहले वाइफ को बताते हैं उनका स्टेटस, आपका एचआईवी पॉजिटिव है, तो उनसे हम कंसर्न लेते हैं, कंसर्न लेके, क्योंकि अभी ये तो ऐसा है कि हस्बैंड का स्टेटस वाइफ को डिस्क्लोज नहीं करने से तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि दे बोथ आर सेक्सुअली एक्टिव। तो इसलिए हम लोग फिर हस्बैंड को बुला के हस्बैंड से भी टेस्ट कराते हैं, उसके आगे हम लोग पेशेंट को एकदम अच्छी तरह से हम लोग पूछताछ कर लेते हैं। उसके बाद जितना भी पेशेंट का वो रिपोर्ट होता है हम लोग एकदम कॉन्फिडेंशियली रखते हैं। कॉन्फिडेंशियली रखने का कारण उसको स्टिग्माटाइज नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बाई चांस कोई पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव हो गया, कोई सोसाइटी में पता चल गया है कि ये पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है, तो वहाँ उनको सोसाइटी में जीना मुश्किल हो जाता है, उनको स्टिग्मेटाइजेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ मिंगल करने नहीं देते, खेलने नहीं देते, इसलिए हम लोग एकदम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। लेकिन हस्बैंड को हम लोग टेस्टिंग कराते ही है।
1: अच्छा जी, तो आप हमें यहाँ भी बताइए कि आईसीटीसी एड्स कंट्रोल सोसाइटी के आप काउंसलर हैं, किस तरह से एचआईवी एड्स उसका टेस्ट आईसीटीसी तवांग में किया जाता है?
0: हम लोग का टेस्टिंग प्रोसीजर यही है, मैंने पहले भी आप लोग से शेयर किया था। टेस्टिंग प्रोसीजर जो जब भी प्रेग्नेंट लेडी आता है पहले डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने वो प्रेग्नेंट है बोल के कन्फर्म कर देता है तो हम लोग का केबिन में आता है, हम लोग वहाँ पे काउंसलिंग करके उसके बाद हम लोग टेस्टिंग के लिए भेज देता है।
1: अच्छा।
0: और जैसे ओटी पेशेंट है, ऑपरेशन पेशेंट, उनको भी टेस्टिंग कराता है, उसके बाद डायलिसिस पेशेंट को भी हम लोग टेस्ट कराता है, उसके बाद ब्लड बैंक में भी पेशेंट को हम लोग टेस्टिंग कराते हैं
1: जी। अच्छा जी, तो हाई रिस्क ग्रुप जैसे कि आपने बताया थोड़ी देर पहले, तो हाई रिस्क ग्रुप के अंतर्गत किस वर्ग के लोग ज्यादातर आपके सेंटर में आते हैं?
0: तवांग में तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे यहाँ सेंटर में कोई भी हाई रिस्क ग्रुप वाला नहीं आता है। जैसे अभी अरुणाचल में हम लोग का टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट है, टीआई प्रोजेक्ट, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर के लिए अलग सा, आईडीयूस के लिए अलग सा, एमएसएम के लिए अलग सा, ऐसा है, लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में नहीं है अभी तक ये प्रोजेक्ट जी, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल में बहुत ही कम आता है, जितना भी पेशेंट आता है बहुत कम वॉलेंटियर आता है, तो वॉलेंटियर तो ऑलमोस्ट बहुत कम ही है। लेकिन हम लोग का पेशेंट स्क्रीनिंग हर वक्त होता है, जैसे एएनसी पेशेंट, जैसे प्रेग्नेंट लेडी के लिए हम लोग सब प्रेग्नेंट लेडी को स्क्रीनिंग करता ही है। तो इसमें मैं एक ऐड कर दूंगी, अगर प्रेग्नेंट लेडी हर वक्त होता है, जैसे एएनसी पेशेंट, जैसे प्रेग्नेंट लेडी के लिए हम लोग सब प्रेग्नेंट लेडी को स्क्रीनिंग करता ही है। तो इसमें मैं एक ऐड कर दूंगी, अगर प्रेग्नेंट लेडी पॉजिटिव होता है तो फिर हम लोग क्या करता है
1: जी,
0: वो जो हम लोग ऐसा है कि पेशेंट को फॉलो अप करता है 9 मंथ्स लास्ट थर्ड ट्रिमेस्टर तक, उसके बाद पेशेंट को कन्विंस करता है, कन्विंस करने के बाद में फिर हम लोग पेशेंट को वही बोलता है कि आप सिजेरियन करा लीजिए। क्योंकि सिजेरियन कराने का कारण क्या है बोलने से, नॉर्मल डिलीवरी के लिए रुकना पड़ता है, सिजेरियन करने से हम लोग अपना खुद का टाइमिंग में वो बच्चे को डिलीवरी करा सकता है, तो बच्चे का आंख नाक मुंह में ब्लड ना जाए, तो इसलिए हम लोग उस वक्त हम लोग मैक्सिमम हम लोग नॉर्मल नहीं करा के सीएस करा देते हैं।
1: सीएस को आप ज्यादा प्राथमिकता देते
0: हैं? जी जी।
1: अच्छा, तो डिलीवरी के बाद क्या माँ के दूध द्वारा बच्चे में या एचआईवी प्रवेश कर सकता है?
0: अभी तक साइंटिफिकली इतना प्रूफ तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग क्या एडवाइस करता है, अगर प्रेग्नेंट लेडी ने डिलीवरी कराया है तो हम लोग बेबी डिलीवरी होने का साथ साथ में बेबी को नेब्रोबिन सिरप पिला देता है, वो उस नेब्रोबिन सिरप जो बेबी का वेट का मुताबिक

0: से हम लोग पिलाता है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद में मम्मी को हम लोग यही एडवाइस करता है कि क्योंकि तवांग जैसे एरिया में बेबी पैदा होते ही टेस्टिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि पैदा होते ही विद इन 48 आवर्स में उनका ड्राइड ब्लड सैंपल DBS सैंपल जो हम लोग कलकत्ता लेके जाना पड़ता है। अच्छा। तो तवांग जैसे एरिया में ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं माँ को ब्रेस्ट फीडिंग मत कराइए। ब्रेस्ट फीडिंग मत कराइए कहने का कारण क्या है, कभी कभी जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराता है तो निपल क्रैक हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो निपल क्रैक होने का कारण से दूध के साथ में ब्लड जाने का चांसेस रहता है, तो उस वक्त में भी जब बच्चा डिलीवरी हुआ है तो नेगेटिव हो सकता है, फिर आपका ब्रेस्ट फीडिंग का कारण से पॉजिटिव हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग ये नहीं है कि आपका मिल्क से ही जाएगा बोल के नहीं है, कभी कभी वो निपल क्रैक होने का कारण से।
1: अच्छा।
0: और इसमें हम लोग एक ये भी एडवाइस कर देता है कि आप लोग एक्सक्लूसिव फीडिंग कीजिए, अगर आप माँ नहीं मानता है मुझे ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है बोलने से, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए 6 महीने तक। अगर आप आर्टिफिशियल फीडिंग कराता है तो एक्सक्लूसिव सिर्फ आर्टिफिशियल, जैसे इलेक्ट्रोजन पिलाता है तो सिर्फ इलेक्ट्रोजन, कभी माँ का दूध कभी इलेक्ट्रोजन, ऐसा मिक्स फीडिंग मत कराइए, क्योंकि मिक्स फीडिंग कराने से बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है,
1: ज्यादा रहता है।
0: जी
1: तो डुलमा जी, आप हमें यह बताइए कि यहाँ पर पैरामिलिट्री वाले हैं और डिफेंस वाले हैं, प्लेन्स के काफी लोग यहाँ पर हैं, तो अभी तक आपका ICTC के माध्यम से अभी तक यहाँ कितने पॉजिटिव केस पाए गए हैं?
0: एग्जैक्टली फिगर तो मैं नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है नहीं बोल पाएंगे।
1: अच्छा।
0: हमारे यहाँ केसेस है,
1: इसे गोपनीय रखना पड़ता है,
0: इस कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। तो अरुणाचल के एवरी डिस्ट्रिक्ट में HIV पॉजिटिव पेशेंट बढ़ ही रहा है।
1: अच्छा। तो क्या आप नॉर्थ ईस्ट की स्टेटस दे सकते हैं हमें?
0: जी जी, नॉर्थ ईस्ट में सबसे हाईएस्ट मिजोरम है वर्ल्ड का, उसमें करने से साउथ अफ्रीका सबसे हाईएस्ट है। जी, अरुणाचल में भी काफी अभी बढ़ ही रहा है केसेस, और इंडिया का उसमें करने से हम लोग का 10 टॉप स्टेट्स है इंडिया में।
1: अच्छा।
0: तो उसमें से तेलंगाना है, दूसरा बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड दिल्ली।
1: अच्छा। तो मेरे मन में एक और सवाल आया है कि क्या HIV संक्रमित व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जी सकता है?
0: जरूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको ये बता देंगे कि अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो उनको मेडिसिन स्टार्ट कर देता है ARV। तो अगर वो जितना जल्दी ARV स्टार्ट, एंटी रेट्रोवल ड्रग स्टार्ट करेगा, उतना वो लंबा जिएगा, क्योंकि HIV इज नॉट क्योरेबल, अभी तक क्योर नहीं है। वैक्सीन अभी तक नहीं है और इसका कोई मेडिसिन नहीं है। ये जो हम लोग मेडिसिन दे रहा है वो जो HIV का वायरल लोड कम करने के लिए, जो वायरस है जैसे आपको हम बता देगा, वो जैसे HIV इन्फेक्टेड होने का साथ साथ में वो वायरस बदन में जाके व्हाइट ब्लड सेल में अटैक करता है, तो व्हाइट ब्लड सेल में अटैक करने से तो व्हाइट ब्लड सेल को डाउन कर देता है और स्लोली वो HIV वायरस जो मल्टीप्लाई होते जाता है। तो ये मेडिसिन जो ARV ड्रग है उससे सिर्फ यही है कि HIV वायरस को डाउन करा के रख देता है।
1: अच्छा जी। हाँ, तो मुझे भी लगता है सेहतमंद रहने की जागरूकता का स्तर जो है कभी भी कम नहीं होना चाहिए, खासकर हम बात करें तो HIV एड्स की। तो डोलमा जी, जैसे कि आपने बताया HIV के लक्षण पाने पर कोई भी जिला अस्पताल के ICTC में आकर जांच करवा सकते हैं, जो कि पूरी गोपनीयता के साथ करते हैं। तो आप हमें यह भी बताइए कि कितनी बार जांच के बाद यह तय किया जाता है कि वह HIV पॉजिटिव है?
0: मैंने पहले भी आप लोगों को मेंशन किया था, लेकिन मैं दोबारा बोल दूंगी, फर्स्ट पेशेंट जब आता है तो उनका टेस्टिंग करता है, तो उसमें अगर पॉजिटिव निकला तो हम लोग पॉजिटिव डिक्लेयर नहीं करते, तो उसके बाद हम लोग अगेन 2 सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 या 4 टेस्ट करने के बाद ही हम लोग डिक्लेयर HIV पॉजिटिव है बोल के उनको डिक्लेयर करता है। उसके बाद HIV पॉजिटिव होने के बाद में मेडिसिन यहाँ से तवांग से स्टार्ट नहीं होते, हम लोग उनका मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए हम लोग ARTसेंटर जो नाहरलगन ट्रिम्स हॉस्पिटल के अंदर है वहाँ हम लोग रेफर कर देते हैं। तो पेशेंट को एडवांस उनको वहाँ पे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद उनका वायरल लोड काउंट करना पड़ेगा, CD4 काउंट करके उसके बाद वहाँ से मेडिसिन स्टार्ट हो जाता है। वंस उन लोग वहाँ से मेडिसिन स्टार्ट हो जाने के बाद में फिर नेक्स्ट उन लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट से ले सकता है मेडिसिन।
1: पहले चेकअप जो है ट्रिम्स में करवाना पड़ेगा?
0: जी, ट्रिम्स के अंदर में हमारा ARTसेंटर है।
1: अच्छा जी। फिर वहाँ से फिर आप अपने जिले से दवाई ले सकते हैं?
0: जी, जैसे अभी तवांग का होने से हमारा लिंक ARTसेंटर बोमडिला है, तो उनको जो कागज देता है वो कागज हमें सबमिट कर देने से हम लोग उसके बाद हम मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, और ये मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेली 1 डोज है। तो हम लोग वही एडवाइस करते हैं कि इवनिंग को आफ्टर डिनर के बाद खाने से, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेडिसिन कभी सुबह लिया कभी शाम को, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा रहता है वो फायदा कम हो जाता है। तो इसलिए एक ही टाइम लीजिए ना, एक ही टाइमिंग में फिक्स करके, जैसे अगर शाम को आप 8 बजे लेते
1: हैं तो शाम को,
0: लेकिन स्पेसिफाई अगर आप 8 बजे लेते हैं तो 8 बजे ही लीजिए।
1: अच्छा।
0: अगर बाई चांस छूट जाता है तो फिर कल सुबह 12 बजे से पहले ले लीजिए। आपको मालूम भी है हर हम लोग का एलोपैथिक मेडिसिन को हम लोग उसका डोजेस पूरा कम्प्लीट करना ही पड़ता है। HIV का भी सेम ही, अगर आप मेडिसिन कम्प्लीट नहीं करेगा

0: कभी खाएगा कभी छूट जाएगा, तो आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होने का चांसेस रहता है. वंस आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, एमडीआर हो गया, तो आपको फिर फर्स्ट ड्रग लाइन काम नहीं करेगा, तो सेकेंड ड्रग लाइन स्टार्ट करना पड़ेगा. तो एनी एलोपैथिक मेडिसिन का तो आपको साइड इफेक्ट रहता ही है. तो अगर जितना फर्स्ट ड्रग लाइन में आपका साइड इफेक्ट रहेगा, अगर आप सेकेंड ड्रग लाइन स्टार्ट करते हैं तो उससे ज्यादा साइड इफेक्ट रहता है.
1: अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: मैं सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग को कुछ भी डाउट हो, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारा आईसीटीसी काउंसलर का अपना केबिन है, केबिन नंबर 2 में, वहाँ पे आप आके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. ये नहीं है कि आप केबिन में घुसा मतलब आपको स्टिग्मेटाइज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप जितना आप एचआईवी एड्स के बारे में जानेगा उतना आपको क्लियर रहेगा, आप उतना आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा. तो हम स्पेशली यंग जनरेशन को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग फीमेल सेक्स वर्कर से विजिट मत कीजिए, आईडी यूज जैसे इंजेक्टेड ड्रग यूजर मत होइए, मिस इंजेक्शन ड्रग यूजर. लकीली तवांग में अभी तक केसेस नहीं है क्या? तो ये सब नहीं होने से अच्छा है. जैसे नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जैसे मिजोरम है, वो इंजेक्टेड ड्रग यूजर से ही है. जैसे अरुणाचल में लोहित सेकेंड हाईएस्ट है, इंजेक्टेड ड्रग यूजर से ही है, ओपीएच ये सब. तो मैं स्पेशली अपने यंग जनरेशन को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एनी टाइम आप लोग आके हम लोग से डाउट्स क्लियर कर सकता है. आप जितना डाउट्स क्लियर करेगा आपको उतना फायदा रहेगा, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए करने के लिए एचआईवी एड्स से.
1: तो जी हाँ, तो श्रोताओं, आज डोलमा जी ने एड्स से संबंधित काफी सारी जानकारियां हमें दी और इससे ये बात सामने आई है कि एड्स को रोकने का प्रयास सरकार की तरफ से तो हो ही रही है, पर प्रयास करने की जरूरत है समाज की ओर से, परिवार के सदस्यों की ओर से और सबसे पहले खुद की ओर से. तो डोलमा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और एचआईवी एड्स से संबंधित काफी सारी जानकारियां जो है हमारे श्रोताओं को दी, तो इसका हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं.
0: धन्यवाद.
1: थैंक यू.
2: श्रोताओं, का कार्यक्रम महिला जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे खंडरोड जांगमो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तवांग के एचआईवी एड्स काउंसलर टुंडुप डोलमा से. एचआईवी एड्स के संक्रमण के फैलने के कारण, इसके प्रमुख लक्षण एवं संकेत बचाव के उपाय तथा उपचार विषय पर एक बातचीत. इनके साथ बातचीत कर रहे थे श्रीमती छेपा वांगमो. श्रोताओं, तो इसी के साथ ही कार्यक्रम महिला जगत अब यहीं पर समाप्त होता है. आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर. श्रोताओं, हम हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए आनंद लेते हैं चंद हिंदी फिल्मी गीतों का.

श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तमाम केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 97.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से राग और इनके साथ तबले पे संगीत दे रहे हैं शरीफ अहमद खान। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, कार्यक्रम रागरंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान की आवाज में राग, और इनके साथ तबले पर संगीत दे रहे थे शरीफ अहमद खान। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम रागरंग अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबाव केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 4:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज बारिश का अनुमान। यमन के सेना और सादा में हुती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हुती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थानों के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव के दौर में भी प्रवेश कर रहा है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्था का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्था के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईआईटी के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावनाएं मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ी दोनों विधानसभा क्षेत्र में भेजी जा रही है। मतदान 6 अक्टूबर को होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल ए पेपरोस से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नरग्रेड इंडियन बास्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीकी और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व छात्रों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पेन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पेन

आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में मदद करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी और एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कप्तान स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्रीय कप्तान स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कप्तान स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। श्री द्विवेदी ने कहा कि कप्तान स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्ष दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। यह घटना कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। यह पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए थे। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हुती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हुतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सेना और सादा में हुती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा है कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हुती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हुतियों की अपनी नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने स्पष्ट पुष्टि की है कि बरमुदा से वेस्टर्न जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिला है। इस विमान में कनाडा के चार और बरमुदा के दो नागरिक सवार थे, जिनकी तलाश की जा रही है। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल अगले दो दिन गरज चमकने के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। वायुसेना ने आज कई शहरों में सेखो भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित किया। इसमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलोर, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि यह मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो की स्मृति में आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजी नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को रूपांतरित करने के लिए शुरू किए गए पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज बारिश का अनुमान। यमन के सेना

Dagong

Jinne

Jamal,

Nāvā-vāndē-shāng-jē-nī-jē-jē-lī-jē-shā-shā-rī-vā-pā-pē-yō

Yeah,

नॉर्थ जसुम चे लेरिम प्रादेशिक संगीत का जिग्मे दोर्जी सी क्रिस न्योरु लदा की तांपोक समखाशे सनमेतोयंबुर लेरिम मेरी बात नॉर्थ जसुम निंग कर्मखली चिचे नॉर्थ जसुम निंग कर्मखली चिकसुम चे लेरिम नारी संगीत कक्षा मनादा चे दिल्ली सिक्स हिंदी फिल्म सम मोहित चौहान सिंगरु सनमेतोयंबुर समी पिचे ओम शांति ओम हिंदी फिल्म सम के सिंगरु सनमेतोयंबुर सम सुम्पुचे पार्टनर हिंदी फिल्म सम सोनू निगम कुनाल गांजावाला निंग सुजी क्यू बासिंगरु सनमेतोयंबुर एचिक सम शिपिनिंग शुक्ताक चे गदर टू हिंदी फिल्म सम अरिजीत सिंह निंग मिथुन ने सिंगरु सनमेतोयंबुर नॉर्थ जेसुम निंग कर्मखल खैने चीचे लेरिम गीत मंजरी का हिंदी फिल्म सम खाशे सनमेतोयंबुर लेरिम राग रंग नॉर्थ जे ब्लिकनिंग कर्मखली चीचे छुचे ब्लिकनिंग कर्मखने लेंगचे हिंदी का सिंग्यूर छुचे ब्लिकनिंग कर्मखने चिलेंगचे इंजी का सिंग्यूर आकाशवाणी ईटानगर के रिलिया सनमेतोयंबुर नॉनुक छुचे लेंगचे मोनपु लेरिम गोदाम नामदार लेरिमा तवंग गोनपाक लोपन सुरप लामा केसंग नरबुसी गेखाप नेपाल कानू बै छुइतिंक लुगी देशे नंगु कोरिम तामचित सनमेतोयंबुर सुचे लेंगेकनिंग कर्म खलीचीचे ना नेछुई खाचानशो बानिंग शुचे तुंड्रेक लेरिम थ्रेटिन लापचिका खंडोटोबा जमु डिस्ट्रिक्ट मनकांग तवांग वाक डॉक्टर डॉक्टर संगी नुरबु तेवका वा गाया छा याक कुसुनिंग मंचो याक कुसु कोर कामेरासुथि सनमेतोयंबुर पिनांगशा कंडिन जुगन लुंटिन खांग तवांग कुशप टशी दुर्जी हिमबुर नोरथुजे ग्रोकनिंग कर्मचीचे लेरिम चरोखा नॉर्थ जे ग्रोकनी कर्म खलीचे शेदोन लेरिमा श्योस्युक अमरिंचिन पेम सिख्रिस्तोनु क्याप थुजेमा पोयतो चंद्रजेक तोयपा संगछोय मनलम निंगो मनलम सनमेतोयंबुर नॉनुप थुजे निश्चे हिंदी का संग्यूर थुजे निश्चिक कर्म लेंगचे इंजी का संग्यूर आकाशवाणी दिल्ली के रिलेया सनमेतोयंबुर लेरिम ग्रामीण प्रसारण नॉनुप थुजे निश्चिक कर्म चीचे सनमेतोयंबुर नोनोप छुजे निशिंग कर्मखली चीचे लेरिम फौजी बायो के लिए फिल्म संगीत नोनोप छुजे निशिंग कर्मखैनी लेंगचे हिंदी का सिंग्यूर छुजे निशिंग कर्मखैनी चीचे इंजी का सिंग्यूर आकाशवाणी ईटानगर के रिलिया सनमेतोयंबुर नोनोप छुजे गेचे लेरिम पुराने हिंदी फिल्मी गीत कलहंगे एतंगवासी व्हाट्सएप ग्यूयक्स थुकदे नौ हिंदी फिल्म यिंगपाक सामखाशे सनमेतोयंबुर छुजे गेटिकनिंग कर्मखली चीचे स्पोर्ट्स स्कैन छुजे गेटिकनिंग कर्मखने लेंगचे समाचार संध्या निंग छुजे दुगुचे न्यूज एट नाइन नौनोप छुजे दुगुक निंग कर्म चिग्रोचे आकाशवाणी तवांग लेरिम बना सचंग तुयु किम्बुर लांगे नासी दाता देश नुप्तिक लेरिम देठे निंग छुजे इचिक नोगोर लेरिम निंग छुजे कोर सन्नाउंबुर लांगे नौ दम्बजे देशिक लेरिम सेदाजित दुस उत आकाशवाणी तवांग इम्बुर लांगे छामु शुकबु लेरिम हिंदी का छुजे ग्रोक निंग कर्म चीचे सन्नांगसा

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है।

श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाएंगे हमारे केंद्र के आज के शीर्ष एवं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। आइए पहले जानते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर मनपा कार्यक्रम शेड्यूल नरीम आज शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर।

आवाजों में एक कवाली और अंतिम कवाली का आप आनंद लेंगे फिजा फिल्म से, कदर गुलाम मुस्तफा, मुर्तजा गुलाम मुस्तफा, ए आर रहमान और श्रीनिवास के आवाजों में। आज शाम 7:25 पर कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कवि मोहम्मद इकबाल के लिखे उर्दू भाषा में गीत का पाठ, और इनके साथ सहयोग दे रहे होंगे कानू घोष और नालिनी जी। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम और कैलाश खेर के युगल आवाजों में एक देशभक्ति गीत। आज रात्रि 8 बजे फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं कल यानी 5 अक्टूबर 2026 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर के 2 बजे मिट्टी न्यूज के साथ, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अनूप जलोटा जी से चंद हिंदी देवगीत। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद लद्दाखी लोकगीत जिकमें दोर्जी और साथियों की आवाजों में। कल दोपहर 3:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के 5वें सत्र के छात्र कुमारी तनसन सोमो से जीवन में अनुशासन का महत्व विषय पर उनका विचार। कल दोपहर 3:33 पर नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे दिल्ली 6 फिल्म से मोहित चौहान की आवाज में, ओम शांति ओम फिल्म से केके की आवाज में, पार्टनर फिल्म से सोनू निगम, कुनार गांजावाला और सुजी की आवाज में, और गदर 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज में चंद हिंदी फिल्म गीत। कल दोपहर 3:50 पर हिंदी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी, इसके अंतर्गत अब आनंद लेंगे फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से सुनिधि चौहान और मोहित चौहान की आवाज में, सनम तेरी कसम फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में, आरक्षण फिल्म से मोहित चौहान, श्रेया घोषाल और न्यूमन की आवाजों में, किस्मत कनेक्शन फिल्म से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाजों में, दम मारो दम फिल्म से पपोन की आवाज में, मद्रास कैफे फिल्म से पपोन की आवाज में, बाला फिल्म से पपोन और सचिन जिगर की आवाजों में, द डर्टी पिक्चर फिल्म से कमल खान की आवाज में, दिलवाले फिल्म से अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में, और आक्रोश फिल्म से अनुपम की आवाज में चंद हिंदी फिल्म गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम रागरंग, कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे मनपा कार्यक्रम दमधल निरिम, 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में, 5:35 पर मनपा कार्यक्रम थ्रैतन लब्जा, शाम 6 बजे लडिम सेरा, 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर मुनपा कार्यक्रम शतुंदरी में आप सुनेंगे शो गांव के अमर रिंचिन पेमा और साथियों से कैप्ट
பொய்ட்டு ஜெமா பொய்ட்டு சந்திரசிக் தொய்பா.

जंग छुई मोनलम और गोवा मोनलम। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। कल शाम 7:30 पर कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप आनंद लेंगे कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, कोई मिल गया फिल्म से उदित नारायण और चित्रा की आवाजों में, और वजीर फिल्म से अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी गीत। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे गुंजन सक्सेना फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में एक देशभक्ति गीत। कल रात्रि 8 बजे फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम चरखा अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मुनपा में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: रियली इज अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस।
0: उपराष्ट्रपति

0: सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का दृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को, पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are important agendas for emerging and middle powers. Speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today, the External Affairs Minister said emerging and middle powers are from Global South and Global North who are united in the goal of being more relevant. He pointed out that the world is changing, its agenda and landscape is changing, and there is a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: Union Agriculture and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan has said the centre will support

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम कवाली आइए आनंद लेते हैं। फिजा फिल्म से कदर गुलाम मुस्तफा, मुर्तजा गुलाम मुस्तफा, A.R. रहमान और श्रीनिवास के युगल आवाजों में मियां शौकत अली के लिखे इस कवाली को संगीत से संवारा है A.R. रहमान ने।

फिजा फिल्म के इसी कवाली के साथ ही कवालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिल कवाली अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कवि मोहम्मद इकबाल के लिखे उर्दू भाषा में गीत का पाठ और इनके साथ सहयोग दे रहे हैं कानू घोष और नाले जी। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ।

प्यारे बच्चों, ये है सिंधी में देशभक्ति का गीत। शीर्षक है ही मुंहिंजो वतन। मुखड़ा ही मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, ही मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन। मिसरीअ खां मिठेरो, माखीअ खां मिठेरो, मिसरीअ खां मिठेरो, माखीअ खां मिठेरो, कुर्बान तहें वतन तां, कयां पंहिंजो तन बदन। कुर्बान तहें वतन तां, कयां पंहिंजो तन बदन। हे मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन। पहला अंतरा, मिठड़े वतन खां, मिठड़े वतन खां आऊं रखी कीब न वारियां। मिठड़े वतन खां आऊं रखी कीब न वारियां। जेकी हुजेम ॾेई वरी कीन पचारियां। जेकी हुजेम ॾेई वरी कीन पचारियां। दिल में हमेशह शाल रहे देश जी लगन। दिल में हमेशह शाल रहे देश जी लगन। ही मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन। दूसरा अंतर है, जे चाह अथम कात, वतन शाद दिसां मां। जे चाह अथम कात, वतन शाद दिसां मां। आज़ाद ॾिसां मां, सदा आबाद ॾिसां मां। आज़ाद ॾिसां मां, सदा आबाद ॾिसां मां। मस्तीअ इन्हीअ में आहे दुखायल जी दिल मगन। मस्तीअ इन्हीअ में आहे दुखायल जी।

0: दिल मगन ही मुंहिंजो वतन मुंहिंजो वतन मिसरीअ खां मिठेरो माखीअ खां मिठेरो ही मुंहिंजो वतन मुंहिंजो वतन।
1: अब श्री कानू घोष इस गीत की धुन तुमको सिखाएंगे।
2: प्यारे बच्चों, एक गीत मैं और मेरे साथी श्री फारूक पहले गाकर सुनाएंगे, तुम सब उसी धुन में गाओगे। अब सुनो। 1 2 1 2 3

श्रोताओं, कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कवि मोहम्मद इकबाल के लिखे उर्दू भाषा में एक गीत का पाठ। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए आनंद लेते हैं एक खूबसूरत से गीत का।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर के रामाकृष्ण मिशन अस्पताल में 33 किलोवाट पावर सब स्टेशन और विवेकानंद भवन फेज टू स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में इस संस्था की हेल्थ केयर और शिक्षा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से लगातार मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने ये दोनों सुविधाएं रामाकृष्ण मिशन अस्पताल और उससे जुड़े लोगों को समर्पित किया। श्री खांडू ने कहा कि उन्होंने हाल ही में रामाकृष्ण मिशन के अधिकारियों से अरुणाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत आलो और नौतम नगर में दो कॉलेज के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके इन संस्थानों को शुरू करने की संभावनाएं तलाश रही है ताकि इस पहल को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री दसांगलू पुल ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश जियोथर्मल एनर्जी से साफ, भरोसेमंद और स्थायी स्तर पर बिजली पैदा करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है, खासकर राज्य के दूर दराज के सीमावर्ती इलाकों में। मंत्री ने सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज के डायरेक्टर ताना तागे और विभाग के भू वैज्ञानिकों के साथ कल लद्दाख की पुगा घाटी में ONGC के जियोथर्मल प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस दौरे का मकसद ज्यादा ऊंचाई वाले हिमालय इलाकों में जियोथर्मल खोज, ड्रिलिंग और साफ सुथरी ऊर्जा पैदा करने की प्रक्रिया को समझना था। यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि तवांग जिले की मागो थिंगबू बेल्ट में जियोथर्मल एजेंसी एनर्जी की संभावनाओं की पहचान की गई है।

0: और राज्य का अनुमान है कि यहां लगभग 10 से 15 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुगा प्रोजेक्ट से मिली जानकारी जियोथर्मल एनर्जी की खोज में राज्य की कोशिश को मजबूत करेगी, खासकर दूर दराज और रणनीतिक रूप से अहम सीमावर्ती इलाकों के लिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्पेयर कॉर्प्स के जवानों ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में बालक स्थित सरकारी सेकेंडरी स्कूल में सफाई अभियान चलाया। इसका उद्देश्य युवाओं में साफ सफाई, स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में छात्रों ने स्कूल परिसर व आसपास के इलाकों की सफाई में सेना के जवानों के साथ मिलकर कार्य किया। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड एंशियंट ट्रेडिशन कल्चर एंड हेरिटेज रिवाच ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के साथ मिलकर 3 और 4 अक्टूबर 2026 को खिंजली में रिवाच कॉन्फ्रेंस हॉल में फ्रॉम वॉइस टू स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट को लागू करने पर 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया। स्पेयर क्रॉप्स के सैनिकों ने कल सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के 86 कैडेट्स और स्टाफ के लिए सिगार मिलिट्री स्टेशन पर एक मोटिवेशनल विजिट आयोजित किया। इसका उद्देश्य युवा कैडेट्स को भारतीय सेना के मूल्यों, अनुशासन और पेशेवर जीवन के बारे में करीब से जानकारी देना था। कैडेट्स ने सेना के मार्शल आर्ट रूटीन का शानदार प्रदर्शन देखा, जिसमें शारीरिक फिटनेस, फुर्ती, सटीकता और टीम वर्क की झलक मिली। मिलिट्री उपकरण की प्रदर्शनी ने उन्हें उपकरणों को करीब से देखने और उनके काम करने के तरीकों को समझने का मौका दिया। कैडेट्स ने बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स और रॉक क्लाइंबिंग जैसे गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के गणित विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय आवासीय मैथमेटिकल थिंकिंग कैंप 2026 कल सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्य से चुने गए 55 मेधावी छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कैंप में गणित, सोच, तर्क, समस्या समाधान, ओलंपियाड गणित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गहन सत्र आयोजित किया गया। एशिया खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक संपन्न हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशिया खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशाने बाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाले नूर डांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Shivasachi Bhattacharya with Regional News. Chief Minister Pema Khandu today inaugurated a dedicated 33 kV power substation and the Vivekananda Bhavan Phase 2 staff quarters at Ramakrishna Mission Hospital, Itanagar, and assured continued state government support to strengthen the institution's healthcare and education initiatives in Arunachal Pradesh. The new staff quarters will accommodate around 18 staff members, while the dedicated power staff station has been established specifically for the hospital. The Chief Minister dedicated both facilities to the RKMH and its extended family, highlighting the state government's efforts to expand the mission's educational footprint. Khandu said he had recently urged the Ramakrishna Mission authorities to enter the field of higher education in Arunachal Pradesh. He said, following discussions with the mission leadership, in-principle approval has been accorded for 2 colleges, one at Alo and another at Narottam Nagar. He further added that the government is exploring the possibility of starting the institutions using existing infrastructure so that the initiative can be operationalized at the earliest. Science and Technology Minister Dasanglupul has said that Arunachal Pradesh is exploring the potential of geothermal energy to provide clean, reliable and locally generated power, particularly in remote and border areas of the state. Pul, accompanied by Center for Earth Sciences and Himalayan Studies Director Tana Tage and geologists from the department, visited the ONGC geothermal project at Puga Valley in Ladakh yesterday to study geothermal exploration, drilling and

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत। आज इसके अंतर्गत अब आनंद देंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आइए इन्हीं नगमों का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। और यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है लोगर ठकुरन वाला फिरोजपुर पंजाब की स्वर्ण सिंगेल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है दो रास्ते 1970 फिल्म का यह गीत जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। इस गीत की गीत रचयिता है आनंद बख्शी तथा संगीत संयोजन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

Sang Drema, Purpal Hamu, Pasang, Theri, Dichin Zangmu, String Drema और Pema Bangdi जी की ओर से आप सभी के फरमाइश पर लीजिए पेश है रंग फिल्म का यह गीत जिसे इस पर दिया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने. इस गीत के गीत रचयिता है नदीम श्रवण तथा संगीत संयोजन है समीर.

श्रोताओं, इस वक्त माना ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तमाम केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। और यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है नमित गांव के पेमा लामू, लुपसांग ड्रेमा, किजांग, करचुंग और उर्गेन पेमा जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। इस गीत के गीत रचयिता है मुकुल दत्त तथा संगीत संयोजन है आर डी बर्मन।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है तेली गांव के ताशी सोमो केसांग सोमो संगपा और दुर्जिल हमोजी की ओर से। आप सभी के फरमाइश पर लीजिए पेश है दीवाना 1992 फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है कुमार सानू ने। इस गीत के गीत रचयिता है समीर तथा संगीत संयोजन है नदीम श्रवण।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान के मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है छोटी सी बात, फिल्म का यह गीत जिसे स्वर दिया है आशा भोसले और विजय यसुदास ने। इस गीत के गीत रचयिता है योगेश तथा संगीत संयोजन है साहिल चौधरी।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत का, जिसके तहत हमने पेश किया आप सभी की वत्सा फरमाइश पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत की बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों पर कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। आपसे कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स का, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ 9 रात्रि 9 बजे। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार फिर मौजूद हूं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे जापान एशियाई खेलों की, जिनका भव्य समापन समारोह के साथ आज हो गया है समापन। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा ने किया भारतीय दल का नेतृत्व। भारत ने 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए हासिल किया है चौथा स्थान। और कार्यक्रम में बात की जाएगी भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल खेले गए तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच की, जहां भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने ये श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। और घरेलू क्रिकेट में रेस्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को हराकर ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब कर लिया है अपने नाम। तो आज कार्यक्रम में सबसे पहले बात एशियाई खेलों 2026 की, जो जापान के नगोया में आज आधिकारिक रूप से संपन्न हो गए। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपी गई। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत के लिए ये मौका कई मायनों में खास रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत न सिर्फ पदक तालिका में देश का मान बढ़ाया, बल्कि कई खेलों में वर्षों से चले आ रहे पदकों का सूखा समाप्त किया। ट्रैक एंड फील्ड से लेकर अपने सटीक निशानों तक कई रिकॉर्डों को ध्वस्त किया। साथ ही कबड्डी, क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों में जहां भारत की रीढ़ कही जाती थी, भारत और महिला और पुरुष टीमों ने कई नए कीर्तिमानों को स्थापित किया।
1: इंडिया विल विन गोल्ड, इंडिया हैज वन गोल्ड इन द वुमेन्स टीम रिकर्व इवेंट, अ फीट नेवर डन बिफोर, सेलिब्रेट दिस विन, ब्रीद इन दिस मोमेंट, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, फर्स्ट टाइम चैंपियंस, टू यंगस्टर्स इन कीर्ति एंड कुमकुम अलोंग विद अंकिता भगत आर स्टेपिंग ऑन टू द प्राइम पोडियम विद गोल्ड।
2: आउट ऑफ देयर है और ये मैच भारत ने जीत लिया और इसी के साथ यहाँ आ गया एक और गोल्ड मेडल। भारत ने ये मुकाबला जीत के एक और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। यहाँ
3: hits the target, so we've got gold with a gold in the women's individual trap event. This is absolutely fantastic.

0: chick.
1: There's the touch and it goes. She gets it. Pranavi Sharath-Urs, even par on the day. 15 under. She finishes overall India's first gold medal winner in golf.
2: Asian Games mein gold medal aa gaya hai Prabhu. Pehli baar hua hai ki men aur women dono hockey teams ne ek saath gold medal jeete hon. Los Angeles walo, swagat ki taiyari kar lo.
3: Now she comes down the track but misses a straight ball. That'll seal the deal. India clinch gold in the 20th Asian Games, Aichi Nagoya 2026, and make it 2-2.
2: Nazare rakhiye, Vidya Ramraj, kya gold medal aa raha hai? Pichli baar silver tha, is baar gold medal aa gaya hai Prabhu. Kitabon mein likha jayega, Surjeet Kalkal ke naam ke saath chalta rahega. Kis tarah se trail kar rahe the, lekin kaisi wapsi ki aur ek gold medal Bharat ke liye dilwa diya. Surjeet Kalkal, asambhav wapsi ko unhone yahan par saakar kiya hai.
4: Big news coming out of the 10K. Gulveer Singh has replicated his CWG form, has won a silver in the Asian Games for India.
5: Surjeet Kalkal, Gulveer Singh, wo tamam khiladi aur wo tamam pal जो 19 तारीख से शुरू हुए इस पूरे आयोजन में लगातार सुर्खियों में रहे और एक के बाद एक अपने पदक से अपने प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया. दो हफ्ते से अधिक चले इस आयोजन में भारतीय खिलाड़ियों ने हर मैदान पर अपना दमखम दिखाया और 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया.
4: The Indian contingent. But let's talk about the Indian contingent. There was fantastic performances in boxing. Three gold medals in boxing at this edition of the Asian Games.
6: Yeah, carrying forward their form from the Commonwealth Games. Lovlina, Ankush, Parveen Huda are three gold medal winners.
7: Tirandazi, mukkebazi aur athletics mein shandar pradarshan tatha cricket, hockey aur kabaddi mein do-do swarna padak jeetne ki badolat Bharat ne Japan Asiai khelon ka abhiyan padak talika mein chauthe sthan ke saath samapt किया. ये पदकों की दृष्टि से भारत का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इससे पहले 2023 चीन के हांगझाऊ में भारत ने 106 पदक जीते थे. एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा. यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रैक एंड फील्ड पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक 24 पदक जीते. निशानेबाज और तीरंदाजों ने भारत के लिए कई अहम पदकों पर निशाने साधे. निशानेबाजी में 3 स्वर्ण समेत 15 पदक और तीरंदाजी 5 स्वर्ण सहित 9 पदक जीते भारतीय खिलाड़ियों ने. मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए. मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा. वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी. कुश्ती में अमन शहरावत और सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीते. इसके साथ ही टीम खेलों में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा. भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता. भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए. भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया. वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए. जापान में कई भारतीय खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड और ऐतिहासिक उपलब्धियां भी दर्ज की. 17 वर्षीय कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी. कुमकुम ने अंकिता और कीर्ति शर्मा के साथ महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में इन खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता. वहीं नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता. एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया. सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया, साथ ही नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया. सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप में 56 साल और सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर में 16 साल के पदक के सूखे को समाप्त किया. बारानिका एंग्लागोवन ने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पोल वॉल्ट खिलाड़ी बनी. सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया. मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता. भारत ने 1998 के बाद पहली बार भारोत्तोलन में पदक जीता. रोशिबीना देवी ने वुशु में लगातार तीसरा महाद्वीपीय पदक जीता. वहीं 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने एशियाई खेलों के स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर नया इतिहास रचा. शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन.
5: तो वो तमाम

0: खिलाड़ी जो पहले दिन से लेकर आज तक इस खेल की सुर्खियां रहे, हर मैदान को जीतने के साहस के साथ मैदान पे उतरे और अब इस पूरे खेल आयोजन पे और अधिक अपडेट के साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशेष मौजूद हैं स्टूडियो में। विशेष, खेल के मैदान में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है, तो भारत की ये तादाद हालांकि दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लेकिन कितना भारी पड़ा ये खिलाड़ियों का शानदार खेल।
1: शक्ति, अगर भारत के प्रदर्शन की बात करें तो बेहद शानदार प्रदर्शन रहा है, लेकिन अगर हांगझोउ एशियन गेम्स 2023 से अगर तुलना करें तो भारत ने इस बार 85 पदक जीते हैं और तब 106 पदक अपने नाम किए थे। लेकिन इस पर भी ध्यान देना होगा कि 2023 में भारत की ओर से 650 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जबकि इस बार 499 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में हिस्सा लिया। तो अगर औसतन प्रदर्शन देखें तो इस बार का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहा है।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन कुछ मायनों में पिछले बार से भी बेहतर रहा है। लेकिन उससे खास फैक्टर जो इस बार एशियन गेम्स में भारत के लिए निकल के आए, सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर क्या कहे जाएं और किस तरह से नए खेलों ने भारत को नई उम्मीद दी है।
1: शक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि नए खेलों में भारत अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाए और उसी को ध्यान में रखते हुए कुराश, एमएमए, रोइंग, सेलिंग, वुशू और सेपक टकरा जैसे खेलों में पदक जीतकर भारत ने इन खेलों में अपनी एक नई पहचान बनाई है।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारतीय टीम जो अपने परंपरागत खेल जिसमें भारत की रीढ़ मानी जाती है, वो कबड्डी हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वहां तो बेहतर कर ही रही है, लेकिन साथ ही अपने बेहतर प्रदर्शन से नए दरवाजे खोल रही है पदक तालिका में ऊपर की ओर छलांग लगाने के लिए। आपने नए खेलों की बात की, इसी में एक खेल स्क्वाश रहा भारत के लिए काफी युवा खिलाड़ी अनाहत। इसके पहले जब चीन में एशियाई खेल हुए थे तो महज 14 वर्ष की आयु में वो भारत के लिए सबसे युवा पदक विजेता बनी थी। इस बार उन्होंने भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
1: बिल्कुल शक्ति, स्क्वाश में अनाहत सिंह का ये जो इवेंट रहा, ये पहला सीनियर इवेंट था उनका और उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। बेहतरीन प्रदर्शन किया वहां अभय सिंह ने, जिन्होंने मेन सिंगल्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और इसके साथ साथ मेन, वुमेन और मिक्स टीम ने भी भारत ने कांस्य पदक जीता। तो स्क्वाश में कुल मिला के भारत का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है।
0: जी बिल्कुल, काफी कम उम्र की ये जूनियर विश्व चैंपियन खिलाड़ी जो बीते कुछ वर्षों से लगातार मिस्र की स्थापित चुनौती को ध्वस्त करने का काम करते आ रही है, ऐसा ही यहां पर किया। लेकिन अगर इस कैंपेन की बात होगी तो सबसे मजबूत स्तंभ, सबसे मजबूत फैक्टर रहा एथलेटिक्स। भारतीय खिलाड़ियों ने कई वर्षों से कॉलम्स खाली थे, 50-50 साल से हमने उन इवेंट्स में पदक नहीं देखे थे, इस बार हमने ऐसे कई कीर्तिमानों को ध्वस्त होते हुए देखा।
1: बिल्कुल शक्ति, अगर हम चाइना, जापान और कोरिया की बात करें तो उनके सबसे ज्यादा मेडल आए हैं स्विमिंग में, लेकिन अगर हम भारत की दृष्टिकोण से देखें तो एथलेटिक्स में भारत ने सबसे ज्यादा कुल 24 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज शामिल है। गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर, 10000 मीटर और 1500 मीटर में पदक जीते, वहीं नीरज की गैर हाजिरी में यशवीर सिंह और रोहित यादव ने जो पदक दिलाए हैं भारत को, उससे काफी नई उम्मीदें मिली हैं भारत को कि जेवलिन थ्रो सिर्फ नीरज चोपड़ा पर टिका हुआ नहीं है। और खिलाड़ियों की बात करें शक्ति, तो सर्वेश कुशारे, मुरली श्रीशंकर, तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट में, तेजस्विन श्रीशंकर, विद्या रामराज जैसे खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया है।
0: जी बिल्कुल, आपने तेजस्विन श्रीशंकर की बात की, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी स्पर्धा खेलते हैं जो कह सकते हैं कि अगर एथलेटिक्स को सभी खेलों का क्वीन माना जाता है तो वो इस एथलेटिक्स की क्वीन है। सभी स्पर्धाओं को मिलाते हैं और जब भी मैदान पे उतरते हैं, नई उम्मीद, नया जोश और नया जज्बा, यही है नए भारत की उम्मीदें। और ये तमाम खिलाड़ी जो आगे चल के और बड़े प्लेटफॉर्म पे और बड़े मंचों पे भारत के लिए पदक की और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की नई उम्मीदों को खोलेंगे। और एशियाई खेलों के बाद अब बात क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबले में कल भारत को वेस्टइंडीज से हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने नाबाद 162 रन की पारी खेलते हुए टीम के लिए जीत के दरवाजे खेले और उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि भारत ने ये श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। भारत ने श्रृंखला के शुरुआत के दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे, शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो विशेष, भारत के लिए हालांकि आखिरी मैच थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन यहां से भारत की नजर हर मैच बढ़ रहा है 2027 विश्व कप जो एकमात्र लक्ष्य है। कितना अपनी तैयारियों का आकलन करने में टीम सफल रही होगी इन 3 मुकाबलों में।
1: शक्ति, अगर इन 3 मुकाबलों में देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाजी ने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है। हर मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, दूसरे मुकाबले में रिकॉर्ड रन चेज भी करी भारत ने और तीसरे मुकाबले में भी शुरुआत में 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़

0: ने शानदार साझेदारी करते हुए भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उसके बाद केएल राहुल ने 129 रन की धमाकेदार पारी खेली और शानदार प्रदर्शन किया। यह वनडे क्रिकेट में आठवीं बार है शक्ति जब दोनों विकेटकीपर बल्लेबाजों ने एक दिवसीय मुकाबले में शतक लगाया हो। नमन धीर ने आखिरी में कुछ रन बनाकर भारत को और मजबूत स्थिति दी, लेकिन गेंदबाजी के दृष्टिकोण से देखें तो यह सीरीज हमारे लिए काफी निराशाजनक है, क्योंकि हर मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन जो है खराब रहा है।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि काफी औसत प्रदर्शन और काफी महंगे साबित होते हुए नजर आए भारतीय खिलाड़ी। और क्या है, दूसरे मैच में 400 का स्कोर पार होना हो या फिर यहां पर 350 के ऊपर के लक्ष्य को डिफेंड ना कर पाना, भारतीय टीम जब वापस आकलन करेगी उन तमाम खेमों का जहां पे टीम को काम करने की जरूरत है तो कह सकते हैं कि इन पे नजर होगी। लेकिन दो खिलाड़ी जब भी भारतीय टीम एक दिवसीय मैच खेलती है तो सबकी नजर होती है रोको की जोड़ी पर, रोहित शर्मा और विराट कोहली कितना साबित करते हुए अपने आप को नजर आए।
0: शक्ति, रोहित शर्मा और विराट कोहली लगातार अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अभी भी अच्छी फॉर्म में बरकरार हैं। रोहित शर्मा ने एक शतक लगाया, 92 रन की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने भी एक मुकाबले में शतक जमाकर सबको ये बताया है कि वो 2027 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं।
1: जी बिल्कुल, और वो दूसरे मुकाबले में शतक के बाद रोहित शर्मा का वो शानदार फिटनेस का संदेश देता हुआ सेलिब्रेशन जो काफी हद तक कह सकते हैं कि उनकी तैयारियों को बताता है। और अब घरेलू क्रिकेट की बात कर ली जाए जहां मुकेश कुमार के 6 और आकाशदीप के 3 विकेट की बदौलत रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। आज फाइनल और मुकाबले के चौथे और अंतिम दिन रेस्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को 167 रन से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
3: There are countries who are emerging.
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
3: Really is a point of convergence.
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह

0: रामन ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वितीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
2: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि एक क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
1: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
1: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
3: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार

0: दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और मीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रूपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
3: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
2: Citing the Quad as an example, Dr. Jaishankar said it demonstrates cooperation among middle powers with an established major power.
3: Today in a maritime space, in the Indo-Pacific space, we have Quad as an example of, I would say, emerging middle power cooperation with an emerged power. A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India Middle East Europe Connectivity Corridor, the International North South Transport Corridor,